0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी कोलकाता गीतांजलि अखुन गाने गानेर द्वितीय पर्व। आज सुनबेन जय पराजय छबिर गान, द्वैत कण्ठे आशा भोसले एवं अमित कुमार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: This is Akashvani Kolkata. You're listening to the Midday Weather Bulletin for West Bengal, Sikkim, Odisha, Bihar, Jharkhand and the Andaman and Nicobar Islands. Summary of observation recorded. Squall passed over Alipur, Gangetic, West Bengal from northwesterly direction with maximum wind speed reaching 60 km per hour from 6:50 p.m. to 6:52 p.m. From northerly direction with the maximum wind speed of 77 km per hour from 2:50 p.m. to 2:53 p.m. Yesterday's highest maximum temperature of 44.2 degrees Celsius was recorded at Sambalpur in Odisha in the plains and 25 degrees Celsius at Kalimpong in sub-Himalayan West Bengal in the hills of the region. Chief amount of rainfall received: Bashirhat 3 cm, Canning 2 cm, Burdwan 2 cm, Durgachak 1 cm, Purulia 1 cm, Kontai 1 cm, Sikkim, Balurghat 2 cm, Raidak T Estate 1 cm, Mayabandar 3 cm, IAF Karnikobar 1 cm, Nankauri 1 cm, Karnikobar 2 cm, Chaibasa 2 cm, Bokaro Thermal 2 cm, Atmalik 7 cm, Banpur 5 cm, Jagannath Prasad in Ganjam 5 cm, Chikiti in Ganjam 4 cm, Banaigar in Sundargarh 4 cm, Nuagaon 4 cm, Joshipur 4 cm, Bhajnagar 4 cm, Dharakote in Ganjam 4 cm, Jhumpura 4 cm. Weather forecast for the next 48 hours: light to moderate rain or thundershower very likely to occur at most places over East Burdwan, West Burdwan, Bankura, West Midnapur, Jharkhand districts of Gangetic, West Bengal and Andaman and Nicobar Islands. Light to moderate rain or thundershower very likely to occur at many places over rest districts of Gangetic, West Bengal and Sikkim. Light to moderate rain or thundershower very likely to occur at a few places over districts of sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Jharkhand and Odisha. Gangetic West Bengal temperature

0: गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए

0: गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना